0: वारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: सिंध ऐं बलोचिस्तान में पाणी जी शदीद खोट वारो मामलो क़ौमी असेंबली पहुची वियो। पीपल्स पार्टी एमएनए जो सिंध ऐं बलोचिस्तान खे घुर्ज मूजिब पाणी ॾियण जो मुतालबो। पाणी मामलनि वारे वज़ीर मोइन भटो जवाब ॾींदे चयो त सिंध 10% खां वधीक ऐं पंजाब 17% पाणी खे मोजी रहियो आहे। पाणी बाबति इरसा में थियल फैसलनि ते अमल थी रहियो आहे। उन्हनि फैसलनि में सिंध बि शामिल हुई। पीपी एमएनए नवीद कमर चयो त इरसा जा अंग अखर सिंध हुकूमत रद्द कया आहिनि। सिंध में फसल पोखण लाइ पाणी न आहे। इरसा कानून खां मथां फैसला कया आहिनि। शाहजी अमरी चयो त वफ़ा न आहिनि। इरसा पाणी वारे 1991 हथियारी जे टकराव में थींदड़ कटौती वारा मुतालबा ऐं ॻाल्हियूं आहिनि जी भंकड़ी करार। कराची जे आर्ट काउंसिल में पीपल्स पार्टी जी सरायल सेमिनार में ठहराउ मंज़ूर। पीपी सिंध जे सदर निसार खोड़े सां घुरे थो त सूबनि हवाले खे वञे। कराची खे वफ़ाक हवाले करण वारो पहिरीं पिंडी खे वफ़ाक हवाले कनि। सिंध में 1 यूनिट लागू करण जी कोशिश कंदड़ आमिर परवेज़ मुशरफ जे ख़िलाफ़ हुई। सीसीआई मां नवां केनाल बि मंज़ूर थियण न ॾिना। हाणे सिंध अहिड़ी तरमीम रोल बैक बि थियण न ॾींदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0330385
3: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम महटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Ashik Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Group Pur Etmat. Aima Akhtiar 3S Dealer. Ashik Honda Motors Mehrapur. Jite nayi motorcycle ji sale. Company aje mukarar kel rate te dastiyab ahe. Service Center. Atlas Honda Limited jo Warranty Claim Center. Service Area. Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi ahe. Honda Company aja tamam genuine spare parts. Khususi riayat te maujood. Ashik Honda Motors te. Pahenje Honda Motorcycle ji tuning karayo. Computerized Japanese Stitching Machine je zariye. जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
4: लेकिन अब सोएंगे कहाँ
5: मैं वहीं जहाँ आधा हिंदुस्तान सोता है
4: हुँ?

ये तुम्हारा टिकट और ये पानी, बैग में कुछ खाने का सामान है और ये 100 रुपए रखो तुम्हारे रास्ते के खर्च के लिए।

0: Ouais.
1: Tadadan. Promotion letter.
0: Congratulations.
1: Thank you. तुम्हें पता तो है ये प्रमोशन मुझे

0: तो तुम बैंगलोर कब जा रही हो?
1: मैं बैंगलोर नहीं जा रही, बैंगलोर जाना कैंसिल।
0: तो मैं बैंगलोर में क्या करूंगा?

0: के ऑफिसर्स का नहीं, उनकी बीवियों का बादल होना।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधनपोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह दह का शाम पंजे वगे तीन मरीजन जो इलाज कंदा हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतुन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन
3: हाने अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
5: उम्मीद के दिए जलते हैं
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03018-65453।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
7: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा? दुकान जी मशहूरी कराई थई
7: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
8: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
8: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
9: 03013992836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

17,000 ₹500 खां वधीक जी वफ़ाकी बजट अॼु पेश कई वेंदी। बजट जी मंज़ूरी जे लाइ वफ़ाकी काबीना जो इजलास कुझु देरि में थियण वारो। पघारुनि ऐं पेंशन में वाधा ऐं टैक्स रेवेन्यू जो हदफ़ 15,260 अरब रुपया मुक़रर करण जो इम्कान। सोलर पैनल, स्टेशनरी ऐं स्टॉक मार्केट ते लागू टैक्सेस में तब्दीली न करण जो फ़ैसिलो। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते सेल्स टैक्स जी शरह में 25% ताईं वाध जो इम्कान। हाइब्रिड गाॾियुनि ते टैक्स जी पुराणी शरह बरक़रार रहंदी। रिवायती ॿारनि ते हलंदड़ गाॾियुनि ते कार्बन लेवी लॻाइण जी तजवीज़। मक़ामी सतह ते तयार थींदड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्तियूं थियण जी उमीद। वफ़ाकी बजट में 220 अरब रुपयनि जा नवां टैक्स लॻाइण जी तजवीज़। पेट्रोलियम शयुनि ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू करण जो बि इम्कान। स्टील सेक्टर जे लाइ फिक्स्ड सेल्स टैक्स निज़ाम आणण जो फ़ैसिलो। ॿारनि जी फार्मूला खीर, केचअप, गिह, काजू जो तेल, चांहि पती, खंडु, खु़श्क खीर ते सेल्स टैक्स जी वसूली जे लाइ क़ीमतूं लाज़मी करार। वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां पेशावर जो दौरो। मोहसिन नक़वी CMH पेशावर में दहशतगर्दनि जे हमले में ज़ख़्मी थियल पाक फ़ौज जे ऐं FC जे जवाननि जी आयादत कई। मोहसिन नक़वी पारां ज़ख़्मी अहलकारनि जे हौसले जी साराह। क़ौम जा हीरो करार।

0: ऐं कंधकोट में एसटीपी पारां चंड जाम पुलिस ऐं कश्मीर पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज घंटा घर चौक खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। अगवाणनि मूजिब ब महीना अॻु अब्दुल जब्बार सब्दोई खे कंधकोट पुलिस गिरफ़्तार करे चंड जाम पुलिस हवाले कयो हो। चंड जाम पुलिस अब्दुल जब्बार सब्दोई खे कूड़े मुक़ाबले में मारे छॾियो। कानून खां मथां क़तल करे पुलिस नाइंसाफ़ी कई आहे। अब्दुल जब्बार सब्दोई मथां को बि केस दाख़िल न हो। इंसाफ़ कयो वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385769
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
6: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300420437
7: अस्सलाम वालेकुम। अदा
8: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
7: न? अदा
5: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
7: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
8: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
9: 0301399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
3: अल्लाह ताला जे घर में रिज़्क रोज़ी में बरकतूं अता फरमाए, अल्लाह ताला तव्हां जे ज़िंदगी में बरकतूं अता फरमाए। जेके बेरोज़गार नौजवान आहिनि, अल्लाह ताला उन्हनि खे कुशादी रोज़ी ऐं हलाल रिज़्क अता फरमाए। जेके बे औलादी जोड़ा आहिनि, अल्लाह ताला उन्हनि खे औलाद जे नेमत सां नवाज़े। त मुंहिंजा मिठा ते प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑनियर कयो वेंदो आहे, जंहिं में असां सां गॾु हूंदा आहिनि इस्लामाबाद जा जंहिं में हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं, अवां पारां मोकिलियल प्यार भरिया मैसेज, ऐं उन खां अलावा अॼोके हिन शो में लाइव कॉल बि हूंदी। ऐं हिन प्रोग्राम में हूंदी आहे तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी। मैसेज करण जो तरीक़ो तमामु सवलो आसान, पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां खां 888-1 ते। ऐं लाइव कॉल जो नंबर बि तव्हां सां मां शेयर कंदो हलां, 0327-36-84-620-3687-36-84-620 नंबर ते कॉल करे तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। हुन खां अलावा इन ई नंबर ते व्हाट्सएप मैसेज ज़रिए बि तव्हां शामिल थी सघो था, जेके वॉइस नोट करे ऐं असांजे नशो में शामिल थी सघनि था। त वॉइस नोट करण जे लाइ बि इहो साॻियो ई नंबर आहे, 0327-36-84-620। तव्हांजा वॉइस नोट जीअं ईंदा असां उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। हुन खां अलावा जेके तव्हां पैनल ते मैसेज कंदा त उन्हनि खे पैनल वारे मैसेजनि खे बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलंदासीं।

0: आपदा परवीन जी खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हां जूं सुंदर समाधूं त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था बज़रिए SMS ऐं SMS कंहिंजो तरीक़ेकार सवलो आसान पंहिंजे मोबाइल फोन जी राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो MRO लिखो स्पेस टू स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते कॉलर जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अदा रेडियो जो आवाज़ त घटि कयो मुंहिंजा मिठा। रेडियो जो आवाज़ त घटि कयो मुंहिंजा प्यारा भाउ।
1: मुंहिंजा प्यारा भाउ घटि थी वियो।
0: कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु आहियो? माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। तव्हांखे प्रोग्राम में कहिड़ी ॻाल्हि ख़ासि लॻंदी आहे दादा? तव्हांखे प्रोग्राम में कहिड़ी ॻाल्हि सुठी लॻंदी आहे? माशाल्लाह। पंहिंजो नालो त तो कोन ॿुधायो, केरु ऐं किथां ॻाल्हाईं पियो? कीरियो किथां जो अदा? दरगाह पीर शमीर। मतलबु तव्हां मोरो खां ॿुधी रहिया आहियो न? जी हा। अच्छा हाणे इहो मूंखे ॿुधायो त कहिड़ो कलाम ॿुधणु पसंदि कंदे? ममताज़ मोलाई तव्हांखे खपे थो? ठीकु आहे, ममताज़ मोलाई तव्हांखे असां ॾियूं था ऐं पंहिंजे दोस्तनि खे शामिल कयो। ठीकु आहे, अब्दुल मजीद कीरियो। ठीकु आहे दादा, ॿुधाए वठे न बाबा, इहे छा लिखां मां थोरी थो। हबीबला कीरियो ऐं ॿिया सभई तव्हांजा दोस्त जेके असांखे ॿुधनि पिया उन्हनि सभिनी खे तव्हांजे तरफ़ खां खोड़ सारा सलाम ऐं वॾी महिरबानी आहे मिठा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो ऐं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां बि असांजे शो में शामिल थी सघो था ऐं शामिल थियण जो तरीक़ेकार सवलो आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, MRO लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते। हिकु ॿियो कॉलर आहे, हलंदासीं कॉलर जे तरफ़। अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो हलो, अदा जो आवाज़ न पियो अचे त दोस्तनि खे चवंदासीं सिग्नल वारी जाइ ते बीह करे तव्हां असांखे कॉल कंदा कयो।

मास्टर मंदिर जो खूबसूरत आवाज़ बादामी अखड़िन वारा चांदीअ जे चपड़न वारा त मुंहिंजा मिठा साईं जन जन हाणे असांखे ज्वाइन कयो आहे त उन्हनि खे असां ॿुधाईंदा हलूं त तव्हां ॿुधो पिया GFM नेटवर्क ऐं प्रोग्राम आहे म्यूज़िक मस्ती ऐं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती सां गॾु आहियां मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण ऐं तव्हां असांजे हिन प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। प्रोग्राम में शामिल थियण जा मां तव्हांखे टे तरीक़ेकार ॾिसिया आहिनि। हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे तव्हां असांजे पैनल ते मैसेज कयो ऐं पैनल ते मैसेज करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 ते। हुन खां अलावा ॿियो मैसेज ॿियो तरीक़ो आहे लाइव कॉल जो। लाइव कॉल जो नंबर आहे 0327-3684-620 ऐं टियों तरीक़ो आहे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज जो। तव्हां व्हाट्सअप जे ज़रिए असांखे वॉइस मैसेज करे सघो था ऐं उनजो बि साॻियो नंबर आहे 0327-3684-620।

0: मास्टर मंजूर जी खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समा तूं व्हाट्सएप ते बि अदनि जा मैसेज अची रहिया आहिनि, पैनल ते बि मैसेज अची रहिया आहिनि, कॉलनि मथां कालूं बि आहिनि, पर वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो त हलंदासीं ब्रेक जी तरफ़, ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं वापसि अची करे शामिल कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल मैसेजिस व्हाट्सएप मैसेज ऐं खणंदासीं तव्हांजी फ़ोन ऐं तव्हांजो कॉल। ऐं उनजे लाइ तव्हां छा कंदा, केॾां बि न वेंदा, ॿुधंदा रहंदा सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ GFM नेटवर्क। ऐं हलूं था हिकु नंढड़े ब्रेक जी तरफ़।
1: फ्री से रिश्ता जोड़ो, सुनते रहो GFM 88 मोरो, मोरो की आवाज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद, आई मा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0303-359-2120।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 91 896

0: बशीर जी तुंहिंजी ख़ूबसूरत आवाज़ ते तव्हांजो सुंदर समाधु त मिठा वक़्तु थियो आहे नंढी कमर्शियल ब्रेक जो हलंदासीं ब्रेक जे तरफ़ ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं वापसि अची करे शामिल कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल मैसेजिस व्हाट्सएप मैसेजिस ऐं रिसीव कंदासीं तव्हांजी कॉल्स तेसि ताईं तव्हां केॾा बि न वेंदा ॿुधंदा रहंदा सिर्फ़ ऐं तरफ़ जी एफ एम नेटवर्क
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GFM 94

मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार, दमा, मैदे के अमराज, अल्सर, बदहजमी और एच पाइलोरी, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, अर्कुन निसा, जिस्मानी असाबी और दिमागी कमजोरी। मर्दाना और जनाना पोशीदा अमराज के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस

0: प्रोग्राम ई हलूं था पैनल ते आयल मैसेजनि जी तरफ़ ॾिसूं था कहिड़नि भाइरनि असां सां मैसेज कयो आहे। अदा गुलाम मुर्तज़ा बलोच पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे, चवे थो सलाम या अली मदद। वालेकुम सलाम मौला पाक अली मदद। महिरबानी आहे अदा तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया। चवे थो अदा मुंहिंजी कॉल त अटेंड कयो, सरकार इलाही ॻाल्हियूं आहिनि, मोबाइल फोन ई हैंग थी वई आहे ऐं ख़बर न आहे तव्हां कहिड़े नंबर तां असांखे कॉल करे रहिया आहियो। तव्हांजो नंबर सेव असां वटि थोरी आहे मुंहिंजा मिठा। ऐं उन खां अलावा ॿियो नंबर तव्हांखे मां ॻाल्हि ॿुधायां, समूरा कॉलर्स असांजे लाइ हिकु जहिड़ा आहिनि। तव्हां समेत जेके बि असांखे कॉल कनि था न, उहे सभई असांजा भाइर या भेनरूं असांजे लाइ सभु हिकु जहिड़ा आहिनि। त जंहिंजो बि भाग जंहिंजो नंबर हूंदो उन वक़्तु मां उनजी कॉल अटेंड करे वठंदुमि। पोइ जेकर उहो तव्हां हूंदा त बि तव्हां ख़ुशि नसीबु आहियो, जेकर को ॿियो हूंदो त उहो बि ख़ुशि नसीबु थी सघे थो। महिरबानी आहे अदा तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो। ऐं उन खां अलावा जेके ॿिया असांजा भाइर पैनल जे ज़रिए असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघनि था त उहे मैसेज कनि असांखे पंहिंजे मोबाइल फ़ोन जो राइट मैसेज ऑप्शन में वञनि, MRO लिखी स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जे शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 ते। उन खां अलावा लाइव कॉल जो नंबर तकरीबन दोस्तनि नोट करे छॾियो आहे, वॉइस मैसेजिस बि आहिनि त वॉइस मैसेज जी तरफ़ हलूं था। वॉइस मैसेज अधु हिकिड़े कयो आहे, उनखे बि ॿुधी वठूं था।
1: ख़ुशि आहियो, ख़ैरास, तबियत सिहत ओके आहे, मां उमेदु थो कयां तव्हां जिते हूंदा ख़ुशि हूंदा, अलाह पाक जी रहमतुनि बरकतुनि जे साए में हूंदा। जी आऊं ॻोठ वलीदाद खान लुंड लॻे सिठाज खां मोहम्मद आहे लुंड। तव्हांजो प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती लाजवाबु आहे ऐं असीं ॿुधी रहिया आहियूं जीअं मेहरापुर FM 94 जे तवसुल सां, जेको स्टूडियो इंजीनियर जीअं मेहरापुर FM 94 जे मोहम्मद उमेर गौरी साहब जे महिरबानी आहिनि, जेके तव्हांजे शो खे या जेके बि शो हलंदा आहिनि उन्हनि खे कनेक्ट कंदा आहिनि। उन खां अलावा एहसान सयाल साहब बि आहिनि, जेके माशाल्लाह ज़बरदस्त सुठो ऐं बहितरीन जेको आहे सो ऑपरेटर आहिनि जीअं मेहरापुर जा, ऐं मोहम्मद उमेर गोरी बि ज़बरदस्त ऑपरेटर आहिनि। सलाम ॾींदासीं कुझु दोस्त आहिनि, ऐं उनखां अलावा असांखे कलाम ॿुधाइजो उस्मान फ़क़ीर सोलंगी जो, लॻी थो प्यार जे क़ाबिल भले महबूब माणा कर। नाज़ कबीर ख़ान सोलंगी साहब ॿुधी रहियो आहे तव्हांखे, ऐं उनखां अलावा जीअं मेहरापुर FM 94 जा जेके बि लिसनर आहिनि, सैद इमदाद अली शाह बुख़ारी साहबु आहे, ज़वार मोहम्मद बच्चन शबाणी साहबु आहे 186 खां, कापरान मैसर साहबु आहे, ऐं जेके पहिरीं पहिरां ॿुधनि था सभिनी खे मोहम्मद आहे लुंड जी तरफ़ां सिक भरिया सलाम क़बूल पवनि।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Account. Bharosa bhi, raftar bhi, bank Al Habib, rishta bharose ka.
2: अब आप GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: 15,000 रुपयनि खां वधीक जी वफ़ाक़ी बजेट अॼु पेश कई वेंदी। बजेट जी मंज़ूरी जे लाइ वफ़ाक़ कुझु देरि में थियण वारो।

पगारनि ऐं पेंशन में वाध ऐं टैक्स रेवेन्यू जो 267 अरब रुपया मार्केट ते लागू टैक्सिस में फैसलो जो इम्कान बरकरार रहनि। क़ौमी सतह ते तयार थींदड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्तियूं थियण जी उमीद।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान खिलाफ जंग में कामयाबी माणण जी दावा करे छॾी। तहरान सां जल्द वाइदे ते सयूं थियण जी दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान खे जंग में शिकस्त ॾेई छॾी, हाणे वाइदे ते सयूं थियणियूं आहिनि। ईरानी सुप्रीम लीडर वाइदे ते राज़ी थी वियो आहे। सयूं यूरोप में थींदियूं। वाइदे ते सही वारी तकरीब में नायब सदर जे डी वेंस शरीक थींदो। वाइदो थींदे ई अब्न हरमुज़ बि मुकमल तौर खुली वेंदो। अमेरिका सां अञा ताईं कंहिं बि वाइदे खे हतमी शिकिल नाहे ॾिनी। पाकिस्तान ऐं कतर सालसीअ में फ़ाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि। ईरान अमेरिकी सदर जे वाइदे ते पहुचण वारनि ख़बरुनि खे रद्द करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ारत चयो आहे त वाइदे जो वॾो हिसो तयारु आहे, पर अमेरिका बार बार पंहिंजी पोज़ीशन तब्दील करे रहियो आहे। अमेरिकी क़दम सफ़ारती अमल खे मुतासिर करे रहिया आहिनि। तहरान रेड लाइन्स ते ठाह न कंदो।

वफाक घर वजीर मोहसिन नकवी पारा पेशावर जो दौरो। मोहसिन नकवी CMH पेशावर में दहशतगर्दन के हमले में जख्मी थियल पाक फौज के FC के जवान की आयादत कई। मोहसिन नकवी जख्मी अहलकार के हौसले की साराह कई और कौम जहा हीरो करार दिना। कंदकोट में SDP जो टंड जाम कश्मीर पुलिस खिलाफ एहतजाज। अब्दुल जब्बार सरदोई के जुर्तू मुकाबले में मारने जो इल्ज़ाम। घंटाघर चौक का प्रेस क्लब तक रैली कढ़ी वही। अगवान मूजिब 2 महीना अग अब्दुल जब्बार सरदोई के कंदकोट पुलिस गिरफ्तार कर टंड जाम पुलिस हवाले किया हो। टंड जाम पुलिस अब्दुल जब्बार सरदोई के कूड़े मुकाबले में मारे छो कानून का मथाओं कतुल कर पुलिस नाइंसाफी कई है इंसाफ किया वे। सखर के गरम गोदी वाले इलाके में बारला कालरा विखे हयाती विजाया बैठा। 2 साल की निंगरी 2 साल जो बारलो कालरा विखे फोत थी व्या।

0: शहदाद कोट जे कुबो सईद खान तालके में बिजली जी बंदिश खिलाफ शहरनि जो सेप्को ऑफिस अॻियां धरणो। मुज़ाहिरीन मूजिबि 1.5 लख आबादी वारे शहर कुबो सईद खान समेत 500 ॻोठनि जी बिजली 5 सालनि खां बंदि आहे। बिजली न हुअण सबबि सख़्त गर्मीअ में अज़ाब वारी ज़िंदगी घारे रहिया आहियूं। बिजली बहाल कई वञे। ऐं कलोई भरिसां वंगो पतण वटि बाहि लॻण सबबि 3 केबिन सड़ी रख, लखे रुपियनि जो नुक़सान। इतला बावजूद फायर ब्रिगेड अमलो न पहुतो, शहरनि पाण बाहि विसाई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी।

0: दिया है। होंडा कंपनियां का तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायतें मौजूद। इरशाद ऑटो से पैंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जिलाए 0320180003।
1: खुशखबरी हानी अवाजे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: त मुंहिंजे मिठा साईं शायर चवे थो त इश्क करणु आसान त कोन्हे, हर का दिल में मान त कोन्हे। इश्क करणु आसान त कोन्हे, हर का दिल में मान त कोन्हे। हिकिड़ी दिलड़ी हिकिड़ो माण्हू, तंहिं वटि बि ईमान त कोन्हे। ईंदो पाण हली अॼु शायदि, ईंदो पाण हली अॼु शायदि। नीह एॾो नादान त नाहे, ख़िदमत वारा माण्हू ॿिया आहिनि। ख़िदमत वारा माण्हू ॿिया आहिनि, अहिड़ो अॼु दरबान त कोन्हे। हिकिड़ो आहियां चिप मां घारियां, हिकिड़ो आहियां चिप मां घारियां। घोड़ वॾो गुमसान त कोन्हे, यार छॾे वियो जेकर सुहिणा, यार छॾे वियो जेकर सुहिणा। मूं को कयो अरमान त कोन्हे। इश्क करणु आसान त कोन्हे, हर का दिलि महिमान त कोन्हे।

0: जंजन दोस्तों हाणे हाणे असांखे ज्वाइन कयो आहे त हुननि खे असां ॿुधाईंदा हलूं त तव्हां ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम नेटवर्क ऐं प्रोग्राम आहे म्यूज़िक मस्ती। प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हफ़्तेवार प्रोग्राम आहे जेको हर जुमे जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑन एयर कयो वेंदो आहे, जंहिंमें हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं, अवां पारां मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस ऐं हुन खां अलावा तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी। तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था SMS जे ज़रिए। SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे तक़रीबन दोस्तनि खे हिन SMS करण जे तरीक़ेकार जी बि ख़बर आहे। हुन खां अलावा तव्हां असांजे हिन शो में लाइव कॉल जे ज़रिए बि शामिलु थी सघो था ऐं लाइव कॉल जे लाइ असांजो नंबर आहे 0327684620 0327684620। त कॉलर आहे हिकिड़ो, हलूं था कॉलर जे तरफ़। अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम सलाम भाई।
0: जी अदा साईं, केरु ॻाल्हाए रहिया आहियो, किथां ॻाल्हाए रहिया आहियो? मीरपुर ख़ास खां ॻाल्हाए रहिया आहियो। मीरपुर ख़ासि वारे भाउ खे मां भलीकार चवां थो पंहिंजे हिन शो में। शो मुंहिंजो ॿुधंदा आहियो अदा? तव्हांजो आवाज़ दादा कटिजी वियो पियो अथव। तव्हांजो आवाज़ असांजे इलाही घटि पियो अचे, कटिजी पियो अथव। ठीकु आहे अदा, पंहिंजे दोस्तनि खे प्रोग्राम में शामिलु कयो मुंहिंजा बेठा। अच्छा ठीकु आहे, वॾी महिरबानी मिठा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो, असांजे प्रोग्राम खे पसंदि कयो था, उनजे लाइ लख कुर्ब लख अहसान। तव्हांजे लाइ हिकिड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, अचो तव्हांखे उहो मां ॿुधायां।

0: प्रोग्राम हेलो था कॉलर जी तरफ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सच्चाला खुश आयो खैरा
0: अल्लाह जे करे मदो मुजो केर गलाए पियो किथा गलाए पियो
1: घरगोठ मामन मूसा बालादी शहर खटड़ो खा गुलाम शाह अमीर बालादी जो गलाए
0: साईं मुजा खुश आयो खैराए ठीक आयो
1: शुक्रान बे एहसान ता खुश आयो खैरा
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जे एहसान की ता के लगंदो आए असा जो ही शो ठीक आया दोस्तन के शामिल कलाम बुधन पसंद कंदा अच्छा हाँ ठीक है हाँ फौजिया सूमर जो कलाम गाय बुधाई तो बुधाईदम पक सा न सही है नी पापा बुधाइन पवी गाय बुधा
1: गाय।

चमनल मीरा लेली खूबसूरत आवाज़ ऐं ख़ासि मुंहिंजे मिठे दिलबर जे लाइ हीउ जेको सॉन्ग आहे स्पेशली मां डेडिकेट कयां थो पंहिंजे प्यारो भाउ दिलबर अयाज़ अली भेण ग़ुलाम मुर्तज़ा मल्ला ऐं उन सां गॾो गॾु रहमतुल्ला संदीलो।

शमन अली मिराले जी खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समा थियो त शायर चवे थो सूंह ऐं सिंगार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं, सूंह ऐं सिंगार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं, मुहब मुंहिंजे यार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं। हर घड़ी हू हुस्न ते अनाज थो निर्मल करे, हर घड़ी हू हुस्न ते अनाज थो निर्मल करे, दीद जे दीवार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं। बेमिसल ऐं बेबहा थियो साथ उन जो उमिरि भर, बेमिसल ऐं बेबहा थियो साथ उन जो उमिरि भर, प्यार वारे प्यार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं, सूंह ऐं सिंगार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं, मुहब मुंहिंजे यार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं।

0: काफला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो तव्हां सभिनी मुंहिंजे मिठनि प्यारनि भाइरनि ऐं भेनरुनि खे प्रोग्राम में भली कार असां चऊं था त प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि ऐं उन्हनि आख़िरी लम्हनि में बि तव्हां असांजे शो में असां सां गॾु आहियो उन जे लाइ स्पेशली तव्हांखे मुंहिंजे तरफ़ खां भली कार त मुंहिंजा मिठा साईं हयाती रही त वरी नेक्स्ट जुमे ते पाण गॾु हूंदासीं।

सख्त सर्दी सख्त गर्मीअ जा ॾींहं हिन वक़्तु हली रहिया आहिनि ऐं सख़्तु गर्मी हिकु कुदरती मौसमी हालत हूंदी आहे जेका ख़ासि तौर ते न जेके हीअ उन्हारे जा ॾींहं हूंदा आहिनि उन्हनि में महसूसु थींदी आहे जॾहिं सिज जी तपिश न तमामु घणी वधी वञे थी ऐं गर्मी पद आम हद खां मथे हलियो वञे थो त उनखे सख़्तु गर्मी या हीट व्यू चवंदा आहिनि जेको गुज़िरियल ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां वठी सिंध जे अंदरि तमामु ज़ोर ऐं शोर सां जारी आहे. इन सख़्तु गर्मीअ में माण्हुनि खे केतिरनि ई सिहत जे मसइलनि खे बि मुंहुं ॾियणो पवे थो. जंहिंमें जिस्म में पाणी जी खोट, थकावट, चकर अचणु, मथे जो सूरु, हीट स्ट्रोक जहिड़ियूं बीमारियूं पैदा थियनि थियूं. ख़ासि तौर ते ॿार, बुज़ुर्ग ऐं बीमार माण्हू इन में सख़्तु मुतासिर थींदा अथव. उन खां अलावा सख़्तु गर्मीअ जा केतिरा ई सबब ॿिया बि आहिनि त जिन में मौसमी तब्दीलियूं, वणनि जी वाढी, माहौलियाती आलूदगी ऐं वधंदड़ शहरी आबादी शामिल आहे. वणनि जी घटाई सबबु माहौल जो कुदरती तवाज़ुन मुतासिर थिए थो, जंहिंसां गर्मी पद में बि इज़ाफ़ो थी वञे थो. सख़्तु गर्मीअ खां बचण जे लाइ ज़रूरी आहे त माण्हू घणो पाणी पीए, हल्का ऐं सोटरी कपिड़ा पाए, ग़ैर ज़रूरी तौर ते सिज में निकिरण खां पासो करे ऐं वण पोखण जी मुहिम में हिसो वठणु घुरिजे. हुकूमत ऐं समाजी इदारनि खे बि घुरिजे त अवामी आगाही पैदा कनि ऐं माहौल जे तहफ़ुज़ जे लाइ असराइता क़दम खणनि. सख़्तु गर्मी हिकु संजीदा मसइलो हिन वक़्तु अदा साईं थी चुको आहे असांजे मुआशिरे जो न, त उन जे लाइ एहतियाती तदबीरूं इख़्तियार करण सां गॾोगॾु गड़ इन सख़्तु गर्मीअ खे मोह ॾियण जे लाइ असांखे वधि खां वधि वण बि पोखणा पवंदा. त हर माण्हू पंहिंजे पंहिंजे हिसे जो वण ज़रूरु पोखे, ज़रूरु पोखे. इन में न ई को घणो ख़र्चो थो अचे ऐं न ई वरी इन में को वधीक का तकलीफ़ ते अमल आहे. अहिड़ो कुझु बि कोन्हे को पंहिंजी सोच ऐं पंहिंजे वित मुताबिक़ हिकिड़ो वण लिम जो ज़रूरु काईंदा कयो. जेको हमेशह मां पंहिंजे टोटल प्रोग्रामनि में ईअं चवंदो आहियां त वण ज़रूरु पोखियो, इहो असांजे लाइ तमामु घणो ज़रूरी आहे. इनशाला ताला हयाती रही त वरी ॿिए प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु हूंदासीं. ऐं वेंदे वेंदे हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्तु सॉन्ग मुंहिंजी प्लेलिस्ट में मौजूदु आहे, उन खे प्ले करे वञा थो ऐं उमेदु कयां थो त तव्हांखे वधि खां वधि पसंदि ईंदो. अब्दुल रब सोलंकी जो आवाज़ आहे ऐं इरशाद जागीरणी जी शायरी. त ॿिए प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त. अलह वाही अलह निगहबान.

0: वाइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवी।
1: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

17,500 अरब रुपयनि खां वधीक जी वफ़ाकी बजट अॼु पेश कई वेंदी। बजट जी मंज़ूरी जे लाइ वफ़ाकी काबीना जो इजलास कुझु देरि में थियण वारो। पघारुनि ऐं पेंशन में वाधा ऐं टैक्स रेवेन्यू जो हदफ़ 15,260 अरब रुपया मुक़ररु करण जो इम्कान। सोलर पैनल्स, स्टेशनरी ऐं स्टॉक मार्केट ते लागू टैक्सेस में तब्दीली न करण जो फ़ैसिलो। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते सेल्स टैक्स जी शरह में 25% ताईं वाध जो इम्कान। हाइब्रिड गाॾियुनि ते टैक्स जी पुराणी शरह बरक़रार रहंदी। रिवायती 12 ते हलंदड़ गाॾियुनि ते कार्बन लेवी लॻाइण जी तजवीज़। मक़ामी सतह ते तयार थींदड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्तियूं थियण जी उमीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी माणण जी दावा करे छॾी। तेहरान सां जल्द मुआदे ते सहियूं थियण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान खे जंग में शिकस्त ॾेई छॾी, हाणे मुआदे ते सहियूं थियणियूं आहिनि। ईरानी सुप्रीम लीडर मुआदे ते राज़ी थी वियो आहे। सहियूं यूरोप में थींदियूं। मुआदे ते सही वारी तकरीब में नायब सदर जेडी वेंस शरीक थींदो। मुआदो थींदे ई आबनाए हर्मुज़ बि मुकमल तौर खुली वेंदो। अमेरिका सां अञा ताईं कंहिं बि मुआदे खे हथ में शिकिल नाहे ॾिनी। पाकिस्तान ऐं कतर सासी में फ़ाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि। ईरान अमेरिकी सदर जे मुआदे ते पहुचण वारनि ख़बरुनि खे रद्द करे छॾियो। ईरानी परदेही वज़ारत चयो आहे त मुआदे जो वॾो हिसो तयारु आहे, पर अमेरिका बार बार पंहिंजी पोज़ीशन तब्दील करे रहियो आहे। अमेरिकी क़दम सफ़ारती अमल खे मुतासिर करे रहिया आहिनि। तेहरान रेड लाइन्स ते छा न कंदो? वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां पिशावर जो दौरो। मोहसिन नक़वी CMH पिशावर में दहशतगर्दनि जे हमले में ज़ख़्मी थियल पाक फ़ौज जे FC जे जवाननि जी आयादत कई। मोहसिन नक़वी ज़ख़्मी अहलकारनि जे हौसले जी साराह कई ऐं क़ौम जा हीरो क़रार ॾिना। कंदकोट में SDP जो टनोजाम ऐं कश्मोर पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज। अब्दुल जब्बार सब्ज़ई खे जुड़तू मुक़ाबले में मारण जो इल्ज़ाम। घंटाघर चौक खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। अॻवाननि मूजिबि 2 महीना अॻु अब्दुल जब्बार सब्ज़ई खे कंदकोट पुलिस गिरफ़्तार करे टनोजाम पुलिस हवाले कयो हो। टनोजाम पुलिस अब्दुल जब्बार सब्ज़ई खे कूड़े मुक़ाबले में मारे छॾियो। कानून खां मथां क़तलु करे पुलिस नाइंसाफ़ी कई आहे। इंसाफ़ कयो वञे। तख़ जे गरम गोदी वारे इलाइक़े में 2 ॿारड़ा कारला विखे हयाती विञाए वेठा। 5 सालनि जी नींगरी ऐं 2 सालनि जो ॿारड़ो कारला विखे फौत थिया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-583-569-0300-335-69।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।

0: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300 3569 0300 3883 8559।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-8151
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 03013992836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 ऐं 0242460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: नेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूम

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
5: न अदा
7: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ई हले थो मो पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे
5: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
6: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास, नए माली साल जी बजट जी मंजूरी डि॒नी वेंदी। 17,500 अरब रुपयनि खां वधीक जी वफ़ाक़ी बजट अॼु पेश कई वेंदी। नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर नए माली साल जी बजट क़ौमी असेंबली में पेश कंदो। बजट दस्तावेज़ पार्लियामेंट पहुचाया विया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त बजट महिनत ऐं सचाई सां तयारु कयो वियो आहे। बजट अवाम जे फलाह वारनि मनसूबनि खे बजट में अहमियत डि॒नी वई आहे।

नवाबशाह भरसां सोठन में ज़मीनी तकरार तां छेड़ो ब भायर कतल टे भायर जख्मी सकरन रोड ते लांडी स्टॉप वटि फायरिंग में सरमद ऐं असलान जमाली कतल थी विया टे भायर फैसल सऊद ऐं सलमान जमाली जख्मी थिया मकतूलनि जे वारसनि चयो त ॿई भायर पेपर ॾियण जे लाइ यूनिवर्सिटी विया हुआ कोट गुलाम मोहम्मद वेझो घरेलू तकरार तां भायरनि में छेड़ो थियो नंढे

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 553 8569।

0: में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003

कर अगर कें भी दोस्त के पोस्ट जरिए मेमोरी कार्ड घुराइण हुए उन लाइ भी राबो कर अलावा असा कई बारी के मेमोरी कार्ड में तब्दील कर दीदा।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-91-8051।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इन दो सालों में महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आई, मगर अब फिर चूंकि गल्फ में जो क्राइसिस है उसके नतीजे में फिर उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ। इसी तरीके से जो आपका जो बैंकों का पॉलिसी रेट है वो भी 22.5% से 11% पे आया है, और ये भी मजीद इसमें कमी आती, मगर गल्फ क्राइसिस की वजह से इसमें भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बार कैफ हमारे जो मेन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो आपके सामने हैं, उसमें मैं मजीद जाए बगैर ये कहना चाहता हूं कि आज इन तमाम तर चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए आज हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तीसरा बजट जो आपकी मंजूरी के बाद इंशाल्लाह पेश होगा उससे हमारी मईशत का पहिया जो है वो तेजी से घूमना शुरू कर देगा, बशर्ते कि हम सब मिलकर दिन रात जवानों रोज मेहनत करें और अपने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको कमा को निभाने के लिए पूरी तैयारी करें। इस बजट को बनाने में यकीनन बहुत चैलेंजेस थे, तो मैं समझता हूं कि कोई कौम तरक्की तो दूर की बात है, वो अपने आप को संभाल नहीं सकती अगर उसके जो सिक्योरिटी अगर मजबूत ना हो,

0: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे
1: वफाकी काबीना नए माली साल जी बजट जी मंजूरी ॾेई छॾी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि काबीना जो इजलास, पघारनि में 70% ताईं वाधि थियण जो इम्कान। नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर नए माली साल जी बजट क़ौमी असेंबली में पेश कंदो। बजट दस्तावेज़ पार्लियामेंट पहुचाया विया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त बजट महिनत ऐं सचाई सां तयार कयो वियो आहे। बजट अवाम जी फलाह वारनि मनसूबनि खे अहमियत ॾिनी वई आहे।

जी खातरी पीपल्स पार्टी चयो आहे त बजट इजलास में सदन समूरा कुझु मेंबर शरीक थींदा क़ौमी वफ़ादनि तहत बजट जो हिसो थींदासीं। नए माली साल जी बजट में सिंध जे अहम मनसूबनि लाइ घटि रक़म रखण जो इंकशाफ़। बजट दस्तावेज़नि मूजिबि सिंध जे मनसूबे सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे लाइ रुगो 30 अरब रखण जी तजवीज़। सिंध

माली साल जी बजट में सालियाने तरक्की जी शरह 4% रखण जी तजवीज। सनअती तरक्की जो हदफ भी 4% रखण जी तजवीज। मजमूई सीड़पकारी जो हदफ 15% रखण जी तजवीज। तरक्याती बजट 1000 अरब रखण जी तजवीज। बजट दस्तावेजन मूजिब वफाकी वजारतन जो तरक्याती बजट 682 अरब 48 करोड़ रखण जी तजवीज। सेहत वारी

लाइ 2,218 अरब रुपया रखण जी तजवीज़, पंजाब लाइ 749 अरब ऐं सिंध जे मनसूबनि लाइ 706 अरब रखण जी तजवीज़। केपी जो तरक़ियाती बजट 450 अरब ऐं बलोचिस्तान जो 308 अरब तजवीज़। बरामदा जो हदफ़ 32,90 करोड़ डॉलर तजवीज़। वापारी खसारो 37 अरब डॉलर तजवीज़ कयो वियो।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301386543।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202-0242460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836।
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जी FM 94।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूम

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न? अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: कासिम मरी मां
1: जी जी मरी साहब हुकुम करे छा पुछंदो डॉक्टर साहब का
0: जी सर इन कब के कोन तो वदे हमरा जो यो 17 18 साल थी दस
1: हां
0: हां ने कद न तो वदे जो
1: कद वदे सी न थो
0: ना
1: बस उमर घणी दस
0: उमर 16 17 साल थी दस
1: 16 17 साल थी दस कद वदे विंदो झल्यो जे डॉक्टर साहब वट
2: जिसे
1: जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक वधनपुर पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामू मेरापुर शहर में डॉक्टर साहब मशहूर आ पूरी सिंध जो मशहूर डॉक्टर आ
0: जी सर जी
1: ठीक आ बाब
0: जी जी
1: वधिक एफएम बुदो डॉक्टर साहब वहां के बुधाइंदो बाकी जो का रूबरू दिखारे वन इलाज मौजूद आ डॉक्टर साहब अलहमदुलिल्लाह
0: जी सर सो सपान हेलो का जमुआ
1: बिल्कुल हलिया जो सब बिल्कुल हलिया
2: जिसे बिल्कुल हार्मोनल इनबैलेंस के करे जो है सो प्रॉब्लम थन्दो आ या एज आए उन जी जगह दवा वठी विंदो तो उनके चार महीनों के कोर्स दौरान उनके काफ़ी फर्क पी सो रूबरू दिखारे वे तो वो बेहतर है
1: प्रोग्राम है अच्छी गाल जी मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ तवाज समाज में पहुंचे पो एक कॉलर लाइन से मौजूद है अस्सलाम वालेकुम जी मुझे साईं केर साहब गलाए पयो जी छा पुछंदा डॉक्टर साहब का सुबह जो मथे में सूर तो पे अद मथे में सूर सजे मथे में सूर अद मथे में सूर सजे पासे ना खबे पासे ना
0: सजे पासे
1: ना अच्छा एफएम बुदो डॉक्टर साहब वहां के बुदाई दो जी डॉक्टर साहब
2: अजी से बिल्कुल ये भी जो को है सो खोड़ सारा उन जा असबाब थी सकन था ये माइग्रेन पेन थी सके तो इन खाए दवा आधे के भी मशहूर दिना से रूबरू अची है दिखारे वेदा है तो दवा दिना सी अल्लाह का तो बेहतर फायदा पे जी
1: प्रोग्राम है सेहत की गाल जी मेरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ अवान समात नहीं पहुंचे पो डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल नवाब शाह असाजे स्टूडियो में मौजूद जी लाइव कॉल जरिए अवान के टिप्स बुधा रहा मालूम दे रहा डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधनपुटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा 0301-9196-851 असो लाइव कॉल जो नंबर आई डॉक्टर साहब जो नंबर भी साग ही है अमां कें भी वक्त डॉक्टर साहब से राबतो कर सको था हलंदा कॉल की तरफ एक कॉलर लाइन से मौजूद है अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम सलाम सही गाला
1: दुआओं अल्हम्दुलिल्लाह केर साहब गलाए भी मुझे साईं
0: साईं असान क्या श्री मंगलाए भी आशिक अली जलवानी जो गलाया
1: आ जलवानी साहब ठीक आयो छा पुछंदो डॉक्टर साहब का
0: साईं पुछना से साईं तबियत सेटिंग में काम दी रहे घणे टाइम का वठी
1: अच्छा छा मसला
0: अद मगत में सूर सो पवे आई जो का पेरन जो तजु भी सडन तो बुखार भी एक न बेरी रोजाना तो अची
1: ता के एक न बेरी बुखार तो अचे पर ता के जन में जोड़न में हडन में बुखार रहे ही रहे तो ता के सणाई भी रहे ही रहे थी
0: हां जी जी संज्ञा गाला है
1: बिल्कुल इ ही रंदो होंदो ता जा खास तौर ते रात जे टाइम में पेर सडंदा होंदा बिल्कुल बस बीमारी के समझी बुधायण सा ही समझी मसलो है डॉक्टर साहब के रूबरू दिखारे वो तो इलाज यो मौजूद है डॉक्टर साहब इलाज कंदो अलहमदुल्ला अल्लाह सिंह के हुक्म से सेहत याब थी दुआओं दींदो डॉक्टर साहब के एफ एम बुधो डॉक्टर साहब वहां बुधाई उम्र घनी मुझे भाजी माशाल्लाह यंग आयो नौजवान आयो ताकि हाने सा ये बीमारियों वठन दियो हाने खा इलाज करायो ने के वक्फो न दियोस बाबा बुधो एफएम बुधो डॉक्टर साहब वा के बुधाइंदो
2: जी से बिल्कुल जे बीमारी कुछ टाइम अरसो हलंदी आ है त पोए वा कुछ वधिक टाइम कई दे इने जकरे इन आदेश भी बेहतर ये जना से त उम्र नडी आ है ए रूबरू देखारे ट्रीटमेंट वठना त वा वधिक बेहतर रंदी
1: प्रोग्राम है सेहत की गाल जी मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ अवान समातुन से पहुंचे पो सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल नवाब शाह डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब असाजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधनपुटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा डॉक्टर साहब हर जुमे सूमर हर जुमे छंछर ए आचर से बगैर फीस यानी उन चेकअप फीस बिल्कुल फ्री होंगी है एक कॉलर लाइन से मौजूद है कॉल की तरफ वासी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मुझा साईं गलायो
3: हेलो
1: हेलो मुझा साईं आवाज अच्छे पे मुझा मिठा केर साहब गलाए पियो
3: मालिया सर लो गलाया
1: जी हुकुम कयो भा छा पुछंदा डॉक्टर साहब का
3: डॉक्टर साहब पुछंदा रे आसा है मानी बानी खाऊंगा रंगारी थी से

0: जी मुझे भा मादे जो मसलो आ माना हां
1: आऊं दे चेल में सूर तो रहे।
0: अच्छा चेल में सूर तो रहे। उम्र घणी आ?
1: उम्र 45
0: बुद्ध एफएम बुद्ध डॉक्टर साहब आ के बुदाइंदो। जी सर
2: जी सर बिल्कुल देखे बीच ना सीधा रूबरू दिखारे तो वधिक बेहतर है। फिलहाल वो अच्छा तिर गुड़ जी मिठाई ऐं भुगड़ा जेको आहे सो हम वज़न सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाए ऐं खीर जो इस्तेमालु ज़रूरु करे। इनशा ताला काफ़ी अफ़ाको अचींदो वरना रूबरू ॾेखारे वञनि।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ असांजे समातुनि ते पहुचे पियो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब सिंह जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। दम सहिको एलर्जी चमड़ी जूं बीमारियूं नक जी हॾी वधियल हुजे गले जो गुदूद वधियल हुजे गुर्दे ऐं मसाने जी पथरी हुजे यानी बुकिन जी पथरी हुजे इन खां अलावा गाल ब्लेडर पिते जी पथरी हुजे उनजो बग़ैर ऑपरेशन जे डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। कंहिंखे बि पथरी हुजे डॉक्टर साहिबु वटि अचे इलाजु कराए अलाह ताला जे हुकुम सां इनशाला डॉक्टर साहिबु इलाजु कंदो। शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह साईं जी आहे। पथरियूं निकिरी वेंदी या पथरी निकिरी वेंदी भली खणी पिते जी पथरी हुजे उन्हनि खे ऑपरेशन कराइण जी ज़रूरत न आहे। केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो? ख़ुश आमदी चवंदा बसीर जे गुलाम अब्बास राजपर साहिब खे। छा पुछंदो राजपर साहिब असांजे डॉक्टर साहिब खां?
1: पेर मुंहिंजा ॾाढो सड़नि था, बाहि थी था वञनि ऐं

0: का
1: पंजहठ
0: साल है माशाल्लाह यंग नौजवान आयो पंजहठ साल की घनी उम्र थोड़ी आए या किया साईं पंजहठ साल डॉक्टर साहब का इलाज करायो इंशाल्लाह अल्लाह तनी जात शिफा देण वारी तैयार थी विंदो
1: पुछी जो को
0: सुबह ताके देउ था पर इन जो इलाज थन घुरजे प्रॉपर तथी दो ता जी ता दो।

पेट्रोल पंप कोरड़ी कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिन इन ही अजोको प्रोग्राम जो भी वक्त पहुंचे तो पुजाणी ते बे प्रोग्राम तई मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी खे इजाजत अल्लाह निगहबान अल्लाह वाही।

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा करायो ट्रेनिस टेस्टिंग मैनेजमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201808
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पेन तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते वे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई

पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

नए दुकानदारनि लाइ फिक्स्ड टैक्स सिस्टम मुस्तारफ़ सालियानो 20 करोड़ रुपियनि ताईं विकिरो कंदड़ दुकानदार फिक्स्ड टैक्स सिस्टम में शामिल थींदा। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर कंदे चयो त फिक्स्ड टैक्स सिस्टम तहत नंढा दुकानदार टैक्स रिटर्न जमा करण वक़्त घटि में घटि 25,000 रुपया जमा कराईंदा। नए माली साल जी बजट में गाॾियूं वधीक महांगियूं थी वयूं। ॿाहिरां गाॾियूं घुराइण ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जो फ़ैसिलो। 2,000 खां 3,000 CC ताईं GSUVs गाॾियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाई वई। 3,000 CC खां वॾियुनि गाॾियुनि ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी विवाद। 2 करोड़ खां महांगियुनि इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जी तजवीज़ ॾिनी वई। इलेक्ट्रिक मोटर साइकल्स, ईवी रक्षाइन ऐं ईवी बसनि ते रियायती निज़ाम बरक़रार रहंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी रक़म में 17% इज़ाफ़ो कंदे 838 अरब रुपया रखी छॾिया। कफ़ालत प्रोग्राम खे 1,20,00,000 ख़ानदाननि ताईं वधाइण जो फ़ैसिलो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर कंदे ॿुधायो त वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम लाइ 71 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। मिल्कियतनि जी मुंतकली ते लागू विथ होल्डिंग टैक्स में घटताई जी तजवीज़। फाइलर लाइ मिल्कियत जी ख़रीदारी ते विथ होल्डिंग टैक्स 28% मां घटाए 1.25% कयो वियो। फाइलर लाइ मिल्कियत जी विकरे ते बि विथ होल्डिंग टैक्स 5.5% मां घटाए 2.75% करण जी तजवीज़।

0: वफाकी हुकूमत परडे वेंदड़ अमीरन के वडो रिलीफ दे छो। जहाज से बिजनेस क्लास में सफर करे परडे वेंदड़न लाए टैक्स में घटताई। परडे में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने ते लागू 5% विद होल्डिंग टैक्स बुढ़ी ढहाई 5% कयो वियो। गैर मुल्की असासन ते कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज। हुकूमत बिजली के शोबे रोडन की तामीर के मुख्तलिफ मनसूबन लाए भी पैसा रखी छदया। ज्यामिर बादशाह डैम अलाए 14 अरब, बहमद डैम लाए 22 अरब, दासू पन बिजली मनसूबे लाए 15 अरब रुपया रखने की तजवीज। के फोर मनसूबे लाए 10 अरब रुपया रखा वह। इन 25 के डबल करने लाए 100 अरब मुख्तस। सखर हैदराबाद मोटरवे लाए 30 अरब रुपये की सीड़पकारी थी। ML1 लाए 25 अरब रुपया रखने की तजवीज। नाणे वारे वजीर मूजिब 10 वन शहर लाए डिजिटल मास्टर प्लान तैयार भी कया वा। वफाकी काबीना नए माली साल की बजट की मंजूरी डिनी। वजीर आजम शहबाज शरीफ है अल्लाह ताला के फजल करम कौम की दुआओं से माशी मजबूती हासिल कई। हाँ खुशहाली जो वक्त शुरू थी चुको है। माशी इस्तेकाम सबब अज हुकूमत बजट में अवाम के रिलीफ फराम कयो। दुखियन हालतन में सबर जो मुजाहरो करते पाकिस्तान के हर शहरी जो थोरायतो आया। हाणोकी बजट में अवाम के रिलीफ भलाई इहा पगारदार तबके ते बार घटण लाए कदम खया वया। वफाकी हुकूमत बजट इजलास का अग नाराज थियल पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के परचाए वरतो। नायब वजीर आजम इशराक डार की मुलाकात का पोए घरू वजीर मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो के परचाए ऐवान में वठी आयो। गिलगित इलेक्शन ते खदशा खत्म करने की खातरी का अग बिलावल बजट इजलास में शिरकत न करने फैसलो कयो हो। पकारन में घट में घट 50% इजाफो कयो। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिम रस्तन ते निकरी आया। शारा दस्तूर ते धरनो। पार्लियामेंट हाउस डां वञण दौरान पुलिस ए मुलाजमन विच में चक्रियूं भी थियूं। केतराई मुलाजिम गिरफ्तार। मुलाजमन जो चवण हो ते एतरी महंगाई में पकारन में घट 50% इजाफो थियण घुर्जे। अमेरिका ईरान विच में इम्कानी मुआदे जा तफसील सामू अची व्या। लबनान समेत समूरन महाजन ते मुकम्मल जंगबंदी वारी तजवीज भी शामिल। ईरानी मीडिया मूजिब इम्कानी मुआदे में ईरान की खुदमुख्तारी जो एहतराम ए अंदरूनी मामलन में मुदाखलत न करण वारी तजवीज भी शामिल। अमरीका 30 दिन अंदर ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कंदो। तेहरान भी 30 दिन अंदर आबदा हुर्मुज के बहरी ट्रैफिक लाए खोली दो। ईरान के तेल ए पेट्रोकेमिकल शयन ता पाबंदी हटाने वारो नुक्तो भी शामिल। ईरान की नई सरताबीर लाए $200 जा मनसूबा भी शामिल। एटमी प्रोग्राम ए पाबंदियों के खात्मे ते गालियों जो अमल 60 दिन में मुकम्मल कयो वेंदो। ईरान जा $24 अरब जा मुंजमद असासा भलेवार जारी कया वेंदा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाए 0300-3385-569-0300-3855-69।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पैंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437
5: خوش خبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 196 851

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: 10% वाधे जी तजवीज, पघारदार तबके ते लागू सिर चार्ज भी खत्म। वफाकी हुकूमत नए माली साल लाए 18,000 अरब रुपयन का वधीक जी बजट पेश करे छी। नाणे वारे वजीर मोहम्मद औरंगजेब बजट कौमी असेंबली में पेश कई। नए माली साल लाए वफाकी हुकूमत जे खर्चन जो काथो 17,495 अरब रुपया लगाया वयो। PSDP लाए 1,000 अरब रुपया मुख्तस कया वया। परदेही कर्जन जो व्याज भरण लाए 8,054 अरब रुपया रखण की तजवीज। दिफा लाए 3,000 अरब रुपया मुख्तस। सूबन जो NFC हिस्सो 8,848 अरब रुपया मुकर कयो वयो। कौमी तरक्याती प्रोग्राम लाए 3,054 अरब रुपया रखण की तजवीज। दिफा लाए 3,000 अरब रुपया मुख्तस। सूबन जो NFC हिस्सो 8,848 अरब रुपया मुकर कयो वयो। कौमी तरक्याती प्रोग्राम लाए 3,675 अरब रुपया रखण की तजवीज। वफाक की तरक्याती बजट लाए 1,000 अरब ए सूबन की तरक्याती बजट 2,224 अरब रुपया मुख्तस।

0: जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज है। दार तबके पर आय सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला किया है।
1: मां घटाए 8 सैकड़ो करे छोड़ो सालियानो 15 का 50 करोड़ ताई आमदनी जी 6 स्लिप ते सुपर टैक्स खत्म करे वो 22 का 28 लाख सालियानो कमाईड़ ला इनकम टैक्स की शरह 23 मां घटाए 20 सैकड़ो कई वही 28 का 41 लाख आमदनी के टैक्स की शरह 25 सैकड़ो करण की तजवीज 41 का 56 लाख कमाईड़ 29 सैकड़ो इनकम टैक्स भरींदा 56 का 70 लाख सालियानी आमदनी ते 32 सैकड़ो इनकम टैक्स की तजवीज़।

0: जिसने कराची को चमन से जोड़ने वाली बलोचिस्तान की अहम तरीन शाहरा N25 पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को दो रोया करने के लिए 100 अरब रुपए की रकम चेहरे फहरिस्त है। इसी तरह शुमाल जुनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि 70 हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा, जिसके लिए 25 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। हर कोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। सबसे अहम मशहूरों में ब्यावी भाषा डैम के लिए 14 अरब रुपए, मैमन डैम के लिए 22 अरब रुपए, दासू हाइड्रो पार्क के लिए 15 अरब रुपए और कराची के बल्क वाटर सप्लाई मनसूबे के 4 के लिए 10 अरब रुपए शामिल है।
1: वफाकी बजट में सिंध जा तरक्याती मनसूबा नजरअंदाज, शामिल कल मनसूबन लाए बे नाले मात्र रकम रखी हुई। सखर हैदराबाद मोटरवे लाए 30 अरब, K4 लाए 10 अरब रुपए मुख्तस, ML1 लाए 25 अरब रुपए रखने की तजवीज़, दयामीर बादशाह डैम लाए 14 अरब, मोहम्मद डैम लाए 22 अरब, दासू पन बिजली मनसूबे लाए 15 अरब रुपए मुख्तस।

0: नंढनि दुकानदारनि लाइ फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारफ़ सालियानो 20 करोड़ रुपियनि ताईं विकिरो कंदड़ दुकानदार फिक्स टैक्स सिस्टम में शामिल थींदा। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर कंदे चयो त फिक्स टैक्स सिस्टम तहत नंढा दुकानदार टैक्स रिटर्न जमा कराइण वक़्त घटि में घटि 25,000 रुपया जमा कराईंदा।
1: नए माली साल जी बजट में गाड़ियूं वधीक महांगियूं थी वयूं। ॿाहिरां गाॾियूं घुराइण ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जो फ़ैसिलो। 2,000 खां 3,000 CC ताईं जी SUVs गाॾियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाई वई। 3,000 CC खां वॾियुनि गाॾियुनि ते फेडरल एक्साइज ड्यूटीअ में वाध। 2 करोड़ खां महांगियुनि इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल्स, ईवी रक्षाइन ऐं ईवी बसनि ते रियायती निज़ाम बरकरार रहंदो।
0: वफ़ाक़ी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी रक़म में 17% इज़ाफ़ो कंदे 838 अरब रुपया रखी छॾिया। कफ़ालत प्रोग्राम खे 1,20,00,000 ख़ानदाननि ताईं वधाइण जो फ़ैसिलो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर कंदे ॿुधायो त वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम लाइ 71 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि।
1: मिल्कियतुनि जी मुंतकिली ते लागू विद होल्डिंग टैक्स में घटिताई जी तजवीज़। फाइलर लाइ मिल्कियत जी ख़रीदारी ते विद होल्डिंग टैक्स 2.5% मां घटाए 1.25% कयो वियो। फाइलर लाइ मिल्कियत जी विकिरे ते बि विद होल्डिंग टैक्स 5.5% मां घटाए 2.75% करण जी तजवीज़।

0: वफाकी हुकूमत परडे वेंदड़ अमीरन के वडो रिलीफ ॾेई छॾियो। जहाज बिजनेस क्लास में सफर करे परडे वेंदड़न लाइ टैक्स में घटताई। परडे में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करण ते लागू 5% विथहोल्डिंग टैक्स 5% कयो वियो। गैर मुल्की असासन ते कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़तम करण जी तजवीज़। वफाकी काबीना नए माली साल की बजट की मंजूरी डिनी। वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो आहे ताला ताला जी फजल करम ए कौम की दुआओं से मुआशी मजबूती हासिल कई है। हाँ खुशहाली जो वक्त शुरू थी चुको। मुआशी इस्तेहकाम सबब अज हुकूमत बजट में अवाम के रिलीफ फराम कयो। दुखिन हालतुन में सब्र जो मुजाहिरो करण ते पाकिस्तान के हर शहरी जो थोरायतो आया। हाणोकी बजट में अवाम की रिलीफ भलाई पगारदार तबके से भार घटाने लाइ कदम खया व्या।
1: थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 ऐं 0242460100।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
4: 3592100।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जीए मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 91 896

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

रेडियंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते